0: 说我眼困着寒门弄后门屋里个吧。下一条的本来也拿今夜的面说了把朋友们的门开。马云云把呢一路啊路路不真呢一路辛苦呀个给一路的中啊中啊。
1: थाबल न लुपा की महीनी तोरेल न पनगाक लीबी नंदन कानंद की हेन बिनी इरम दम दगी हेन बकरी लई बगे पामजदे सर्ग की अमरावती पुमनमक तगी अथोई बिनी नहाकती पुमनमक तगी अहेन बिनी नहाकती।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अयुक पुंग तरेन मखाइ तारे मणिपुरी द पाउक ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल गांगबम गांथोइना पाउ पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाउ कौटुक तगी लानजेना रुबदगी अमु हलकतुना युम सादुना लैबा हौरबसिंगी फिबा मुख्यमंत्री युम नाम खेमचाने यिंसिनख्रे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हाइरी मणिपुर यावना अवांग नोपो राइजो सिंग अमदि लेबा असिगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा गसि अखनब नोंग चुरबा याय अमसुंग तरामाथुइ सुब सहिसागी सोला एम्पायर गी कोरिना साबा प्लेसिंग नेदरलैंड्स की लिडेन यूनिवर्सिटी न

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे।

0: स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास

0: को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकिंग

0: 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोकसत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sai Raj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Fallon

0: हेलो,
1: हेलो
0: गुड
1: लेडिज सरम
0: मॉर्निंग
1: द
0: सर।
1: करम नक्चर ई गुड मॉर्निंग कना ओ बिरबनु कॉल तो बिरै से ताबिर ब्रा
0: सर खुराई देगी रोमावती थोड़ा उजमने सर।
1: रोमावती तराम नक्चरी करी तो बिरमिनु हो जिक्सिबो
0: अच्छा सर इसिंग कन्न हो न जब नि दुख हो गे न खगी रेडिस की प्रोग्राम से मतलब कोई इन लेपु दो खाव हो गे न लाम बजे दिन मांग त माने रे कि मति हराव वो नुआ जब से पोके ये सार मतलब सांग ना पोथा जब हम वो जब नहीं तो मतलब खरली है पुवजी

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: तारा नोकचरी के नाम बीर बनो
1: यही फोन टॉपिंग था देगी कौन सी बात उन्होंने भी
0: अंगूठी तारा नोकचरी गसी कॉल तो वीरक पा करी करम बो वाफ़म सिंह थंबी कनी
1: अच्छा सारा कोई मणिपुर बना ही बा कोई की खाई नंबर बाजार मार के थे हाई न खाने रहते ना जिसे फिर रोज इमा के थे मैंने इस दा कोई की परफॉर्म फॉर्म भी मार जिंग जिना कोई लुटी हाँ तो कोई मणिपुर में कोई लुटी हाँ तो फॉर्म मगा
0: हाय
1: कोई के थे जिसके मगो निया ये बको था
0: मसिमंगनासु आइखोगी मालेमगी मफम खुदिमक्ता आइखोगी इमासिंगना इमासिंग खक्तना फम बकैथेल ने हाइबगी दमक्ता मयामन सखंगबी बा अफाउ ब मफम मस ओइरिबनी हाय
1: अच्छा
0: मखाताबियो
1: दुगा कोई की दुकान मगे थे जिसके मनुष्य ना तब कोई दुकान परिंग दुकान सो सो बोले दी दमा इधर से दमा मु

0: हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो लेडीज थोरम दा दोंबु तराम नुक चेरी मिंगले फुम तक
1: गुड
0: पियो।
1: मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग मिंगले फुम तक पियो।
1: तभी बुआ आयो
0: ताजरे ताजरे मिंगले फुम तक पियो।
1: ये मसी कैनो थंग मसी अम नुआई नांगे कुई न सांग न लेप लगा सार दो नां कुई न सांग न लेप इस बुकरी कुरुम बाजा बलाई बुझी ना
0: ꯍꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ꯫
1: ꯐꯣꯟꯅꯤꯡ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯎꯄꯥꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯈꯪꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯅꯦ ꯍꯔꯥꯎꯃꯟꯈꯤꯗꯅꯅꯦ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯄꯣꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯗꯤ ꯐꯪꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯁꯤꯒꯤꯗꯣ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ,
1: ꯍꯥ
0: ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ, ꯑꯝꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯣ꯫
1: ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯁꯥꯔ?
0: ꯑꯍꯣꯏ
1: ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯊꯤꯌꯥꯃꯪꯒ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯝ
0: ꯃꯦꯝ ꯃꯦꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ, ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ
1: ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ
0: ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ꯫
1: ꯁꯥꯔ ꯃꯉꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯔꯦꯠ ꯅꯤꯄꯥꯜꯂꯛꯄꯨ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯀꯦ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯣꯜ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ
1: ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯁꯨꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯍꯥꯟꯕ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯐꯪꯗꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯃꯃꯝꯗꯅ ꯁꯨꯝ
0: ꯐꯅꯤ
1: ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯁꯥꯔ
0: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯩ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯈꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯒꯦ, ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ,
1: ꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯣꯅꯦ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ
0: ꯂꯦꯞꯆꯔꯔꯣꯏ ꯂꯦꯞꯆꯔꯔꯣꯏ, ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯒꯅꯤ,
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
0: ꯐꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ, ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦ, ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤ ꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫

0: ना मयु मकई लोइन थुकाई एं खाई देना सारा छारे देना सार
1: तुम पो
0: सार
1: अदुमने तो वो दुश्मन है अफ़ाब दीना ते नहीं अदुबो कोई शाहुने रब मियाम ना होरक पना मीगी मांग न बताओ बाहे बसे इपान ने कोई देगी पामजे दबर सिंगे मनुंग द मधु सोमन
0: सार इहों तो द याऊरी बा मिपुंग कुदी मक पत्ते खंगली बनी अदुबो मकोई की नक्चाव थे प मोंग मत उदु द मियाम से पता बंगम की दबराई न खली सा
1: तुम पोक नमागी मथोमंग मसे पांगथोक पर लोई दरी फाव दे स्कूल की थपक थरम से नंग नने सेक्शन यंगशन बिगा दबनी को
0: सा अदुगी दी वजा सिंह मयांग बताना दना फजन यंगशन जरी सिनबी बत थोकदांग कुदिंग मक नमनन बहोन जगनी है सा कई इंतज़ाम नहीं बिगन
1: अदु दी मांग द तादु ने लेर बत थपक सिंह सी द मायों सिलसी यावरो यावरो ना तनोबी ऐना नंगी न फम द तमुंग द उड़ी बा ऐ कल्ले कच्ची मधे नंगी थवाई न पेन मधे ओएरे रोय हाई बा ऐ मुन्न कंग अं ऐ मुवार होगन ऐ वाकल ऐ न करी पाम्बा नहक मुन्न कंग की बन पत्र बा पत्र बा मागे थाक द कुम्था दुना इकुट मंगन लमन कुम द बगे द मक्ता नंगना ऐ बुद्धि अमुक तंग नाक पियो को

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है।

0: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपए और गुरुग्राम में 85.12 रुपए हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर प्रसारित फौज भाइयों के मनोरंजन पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

फौज भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही रूप, और एक ही रूप के अंतर्गत आप सुन पाएंगे लव स्टोरी। हाँ जी, 1981 की ये मशहूर संगीतमय और रोमांटिक फिल्म है लव स्टोरी। लव स्टोरी की ये मशहूर गीतों में से एक है जो सब सुनना पसंद करते हैं दोस्तों। लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में ये दो गीत है, आनंद बख्शी की रचना और राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में।

1981 की ये फिल्म है लव स्टोरी, और फिल्म में खासकर ये गीत लोगों के जुबां में आज तक बसी हुई है। प्यार के वो दो लव्स इस फिल्म के हर गीत में हमने सुना है, देखा है। ये फिल्म जिसका निर्देशक है राहुल रावेल, और इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाओं में दिखे थे राजेंद्र कुमार और उनके साथ उनके बेटे कुमार गौरव, और इस फिल्म की जो हीरोइन है, जो नायिका है, वो है विजेता पंडित। लता मंगेशकर और अमित कुमार के गायन में ये गीत है। फिल्म के निर्देशक, फिल्म के संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन और गीत के लेखक आनंद बख्शी की रचना पर ये गीत।

अगला जो मनभावन और मज़ेदार गीत है लव स्टोरी फिल्म से। इस गीत के सारे जो गीत हैं वो आपको एक के बाद एक उस फिल्म के नज़ारों तक पास ले जाती हुई आपको पाएगी। और इस गीत में जो कलाकार हैं वो है अमित कुमार और लता मंगेशकर, रचनाकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: सड़क की जरा सी।
1: और फौजी भाई, ये भी माना जाता है कि इस फिल्म के जो खलनायक और खलनायिका है, कुमार गौरव और विजेता पंडित, इनके लिए ये इनके अभिनय के करियर की शुरुआती ही पहल है। और इनके साथ थे इस फिल्म में डेनी डेंजोंगपा, विद्या सिन्हा, अमजद खान और अरुणा ईरानी। और अमजद खान को सहायक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका का पुरस्कार से नवाजा गया था। ये अगला गीत है लता मंगेशकर और अमित कुमार के गायन में। रचनाकार आनंद बख्शी द्वारा ये गीत है और संगीत निर्देशक हैं राहुल देव पर।

ये प्रसारण है आकाशवाणी इम्फाल के कंगला चैनल द्वारा और आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में एक ही रूप और एक ही रूप के कार्यक्रम में आप अभी सुन पा रहे हैं लव स्टोरी फिल्म से वो सारे यादगार गीत जो एक बार सुन ले तो बस गा भी ले। और ये अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में, क्या गजब करते हो जी। छायांकन में इस फिल्म में, इस फिल्म के बारे में आपको छोटी छोटी वो सूचना हम बता रहे हैं। राधु कर्मकार की ये छायांकन है इस फिल्म में और संपादित किया देविद धवन और संगीत के जो निर्देशक हैं राहुल देव बर्मन और वितरित करने वाले हैं आर्यन फिल्म्स। और ये रहा आप ही के लिए आशा भोसले की आवाज़ में ये मधुर गीत।

और इस फिल्म का ये सबसे दावेदार गीत है, क्योंकि इसके हक में आए थे 3 पुरस्कार। पहला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए अमित कुमार को सम्मानित किया गया, और सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए आनंद बख्शी, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए राहुल देव बर्मन।

आकाशवाणी इम्फाल असै मलेंगु जैंग्रु सुनाई नई नई तिंगजिन गाय मिखाओ तंपलो बुबे कबई मिटालंग तंपब मई मीडियम वेव मीटर फैथम हृदय पोना खचरु कैलो हर्स फैसल चलकनाई थवरे मिखाओ नाइबंथे असै जानेखाटों चम आकाशवाणी इम्फाल लालो दिखो असै जानेखाटों चम चम तंपब मई अकाउ पान मई इंडिया ले नीदरलैंड्स कंदी कनाई रुई बाय बाय मे तानबम अजु खाउ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खान खाउ करेंग जाय थाउ लौद खान प्राइम मिनिस्टर पो नरेंद्र मोदी खानी डच प्राइम मिनिस्टर प्रोप येटेन कनाई रुई हेक केदाय खाउ सोय सब लो कथे तो खाउ तय कपी सिंह नई ते रुई ट्रेड डिफेंस टेक्नोलॉजी वाटर मैनेजमेंट क्लीन एनर्जी हेल्थ केयर खानी एडुकेशन खाउ बान सिंसम खान दिंके लोगने प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वीडन जाने नई सेंटर खुना असै गोटनबर्ग खाउ कौटंग लोपुनी मी है रुई न्यू दिल्ली खानी स्टॉकहोम टोंग थे थे खौरी नाइब मई किंग्रेम थे तिगाई लोद खाने डिस्ट्रिक इलेक्शन ऑफिसर डीसी नोने डिस्ट्रिक बंग खाउ नाइ मई 54 नुबा एस टी असेंबली कंस्टिट्युएंसी टोंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर 2026 असै 26 जुलाई दुलोंग बुजांग खाटखाउ कुम चिन्हई चिश्रुक है क्वालिफाइंग डेट सुना तिंगे लोकन थे प्रिपेरेशन ट्रेनिंग खनी प्रिंटिंग तान रुई मे मलियंग बुजांग सुई खौरी सिस्कु फाउ खाउ सुलोपनी बोर्ड लेवल ऑफिसर बीएलओ गोय रुई मे बुजांग तमरु खौरी जुन तुंगाइबु जैंग चुट चट फाउ खाउ काय काय खाउ तदना जागु लोपनी पोलिंग स्टेशन रेशनलाइजेशन रुई जुन चुट चट खाउ सुलोपनी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल रुई जुलाई पुंगो खाउ पब्लिश सुलोपनी मई खाउ ऑब्जेक्शन खनि क्लेम सुलोनी मई रुई जुलाई पुंगो खाउ रुई अगस्त पद फाउलों खाउ सुलो नु फाइनल इलेक्टोरल रोल रुई सेप्टेम्बर चरुक कुम चिन्हने चिप्रुक खाउ पब्लिश लोपनी थे तुना डिस्ट्रिक इलेक्शन ऑफिसर नोने डिस्ट्रिक रुई तिथाई पटकन थे मणिपुर चीफ मिनिस्टर पो युनाम खेमचांद सिंह रुई अकाकंदी खाउ अखाना मई कगुन कगा नाई मई नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर खाउ प्राइम मिनिस्टर पो नरेंद्र मोदी रुटिंग थाउ लौमेता थंकुना सालोकन थे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक टोंग कौट्रुक खाउ कसेम थाव मई नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तै चीफ मिनिस्टर रुई तटना जौकुलौकने कैंपस खाउ स्टूडेंट सिंख फाइथुम दौगै रुईबम निमई प्रोजेक्ट तै मैटिकुम तोंग लोनी

आकाशवाणी इम्फाल अरोहन खवेवांग आज विपाव अनाउंसम रिमे कब तक मताये पाउपिंग चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान ने कहा ngalai hiwi digital infrastructure matai maida pangsang sakhwai digital india na odmanga hakla kaina khuidalai assam sarkar na thigahai kum kuchung khawi mamangli ai jangda haksang reisang khwai odmanga kuchungka sarai ra da hangmeira india kala netherland ngshik mai khwai wimaramli maya khongrok shoi kuchungka sangrok khaira ara pauping maisaina hangmile आज ओक्टोबर अपम हुप्तले वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मयोन हैराम आज कुम वे जिमिक शो हे वे तुई कुइनव डिजिटल लाइफलाइंस फॉर अ रेजिलियंस एंड कनेक्टेड वर्ल्ड कचिहिनाम जिमिक शो हिले स्टेट हिवे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान्ना यारुइले रिंगपा चानपाउ हंगाइराम चीफ मिनिस्टर न कहंग ngale hiwe digital infrastructure matai maida पंग सखवाई डिजिटल इंडिया न ओत मंगा हकला कैना खुदल आना कहां डिजिटल वे मंगा ऐना अख ऐना अख ngshik ngsak ka kala pangshap le mai khwai sarkar na hotna dalai da hangmeira aaj world hypertension day mayon hairam hypertension we maramni matai mai da thai khui ngsak khwai jimik shohi mayon ra ga haina आचुकुम वे टू क्वीनवा कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर किचिहिना मी बिलियन आकलांगदना गजात ही गजालगा रिंगरा दखलेना असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा ना आया इंडिया वे खरे एआई पावर फिजिटल कचि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक वे बैंकिंग ब्रांच आका गुवाहाटी वे जीएस रोडले थरकत मेयराम चीफ मिनिस्टर न कजिप चिली मतुमीद कहंग हिना डिजिटल वे अपोंग ऐना सिना लुपा वे पोंगली कानखना मीरम आना कहंग असम सरकार न थुई गहाय कुम वे ऐना ओत मंगा हि मताई मैद खुइखत खुइकारा गहायना स्टेट सरकार कला स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक नंगरुम द स्टेट हिली सिना लुपा वे अपोंगली खंगचे खुइरा खवाय खुका दखले ओत मंगा हि मताइला कहना थर्ड कशो एआई पावर फिजिटल हिना बैंक वे पोंगले कानखना कचुंग मिहाउरा दहांगाइरम त्रिपुरा वे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मनिक साहाना कहां कथर टेक्नोलॉजी कल इंफ्रास्ट्रक्चर पिंग हकसंग रेसंग दखले हिले तर सिक्चिन वे पोंग लीला हांगाइरम अगर तलाली खले विश्वेश्वराया कंप्लेक्सली आया वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ना सेमका स्टेट लेवल डेटा सेंटर थरकट वी रानियली तुही चीफ मिनिस्टर न फोंगशो कहैना आना कहां डेटा सेंटर ही ना स्टेट हिवी ngale alungwi तर अतम चादा यंगसंगरर हौराम चीफ मिनिस्टर न कहां स्टेट चिली ग्राउंड वाटर कचुंखलैया ख मथा मशीचिन पाइरंग हांगमेरा आना कहां डेटा सेंटर हिला थिंगफुन लुईवाद ओडली कानखना खमी दाम कल कोंग विर मथाद यंग संगली खंगचोन कुचुंग खमीर द हांगमेरा इंडिया कल बांग्लादेश वे अलुंगली कफा खुरा खवाय चान ngze क्रुम फोखैरम चान ngze खंगरुम विमरामली मेघालय वे चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमाना कहां हिला ngale khani we alungle kapha kala lei ka sa we pongle la haksang shapauram paume pingle matu mi da kuire sangmana kahang bangladesh na kala kila kashi kushok tharan india na ngachon khami ainang so da ngale khani hi mashitra ga haina ana kahang 2024 le shoka hai political unrest chili chakam ga hai thari ping latlui da shomi

थोरम से डॉक्टर तहानसरी आकाशवाणी इम्फाल की कंगला चैनल की नमीदांगी थोरम सिंह ने थोरम तापीरम लिप पुनम पुतराम नोक्सरी कुरुमजरी हौजेक चैनल अदीदी हयेंगी संदोक सकदब थोरम सिंह सामलब निंसिंजरी निंसिंजब सिग्लोबेग तहनजुगनी मणिपुरी फिल्म से नमीदांग पुंग तरुक निफू खुंगंगी थोरम थोरों की अहमद थमजरी हैसना मांगोजाउ सिंह सकप खोंजोम पर्व अरोबद थमजरी करी हाई लौमीना थोरम सिद मयेंबम इंगोब सिंह फिश फार्मर वबगाय कदाजीत अवांग लेकाय उनदनवारी साब उनबीगदब लांगोंजम सैथजीत थोरम पुथोप रायचंद सिंह थाम पुंग तरह मिनी निफूम लानथोसगनी था सैसपी निथौजम प्रेमीला देवी सैरेंब थिंगबाइजम सोरन कुमार पुथोप हाइक्रुजम देवेंद्र निमिदां पुंग निपान मणिमलादगी चिठी पाकुम तोंगान तोंगान सैसप मणिपुरी मतम इसई ताहनजगनी पुमापन मिनी तराम हैसना मांगोलजाउ सिंह सकप खोंजोम पर्व अमुक हन ताहनजगनी पुमापन मखाय साहित्य की थोरम थमजरी डॉक्टर सुधीरंजन मोरांगथें वारी मचा अकोजम जितेंद की सैरें नावरेम अहनजाउ मैतेगी वारें थोरम पुथोप नोंथोंबम रोमा पुथोपद तेंबांग ख्वाइराकपम मीनाक्षी पुंग तरा ताबीनिंग सिंह खनबीरप मणिपुरी फिल्म इसई ताहनजगनी हये मे तरानिपान निथौगाब नुमित इंगागी निपान सकाप्त लिंग मचापनफू निपान अयुकी पुंग मंगा मखाई ताब मतमदगी आकाशवाणी इम्फाली कंगला सेनल की थोरम सिंह संदोक हौजगनी संदोक सकदब मेडियम वेब मीटर सहुम निफू दस पीगब किलोहर चापान मरफू निथुदनी थोरों की अहानबद थमजरी याकायरोल हयेंगी याकायरोल ताहनजगनी लाइस्रम लेबाक मचा की पेना याकायरोल अपुनब की खोनसिल इमा लेबाकपो सैथाजब इसई इलांगबम नेत्रजीत असें बिमला देवी संजेंबम बकीमचंद्र सिंह सकप लाइसोल इसई मथंग मथंग ताहनजगनी पुंग तरुक मिनी तरह लौ सिंह की वफम ताहनजगनी माइक्रो न्यूट्रेन की हार सिंह पुंग तरुक मिनी तराम लाइस्रम नंद कुमार खुमंद की मैते इसई लानथोसगनी तोान तोान सै सकप सिंह सकप मथम इसई ताहनजगनी हये अयु पुंग तरुक मखाय हयें इसई सकप सिंह की सापम रीना देवी अबुजम रोबिन सिंह नावरेम रेबती लेम पुंग तरह खोजेल नाचोम हयेंगे नाचोम थमजरी इसिंग मरीद नुंग हिरम डॉक्टर सिनाम राजेंद्र फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी रिम्स सीनियर कंसल्टेंट कृफादासीनी एडवांस हॉस्पिटल उन्दन वरी साब उनबीगदी सेराम लिंथोय थोरम पुथोप थोक्सोम रेणुबला पुंग तरह मिनी निफू ओक्रम ओंबी जमुना देवी सकप नोट नावरेम इबोहन भी सिंह खोब सैसा फोन ताहनजगनी हये यु पुंग तरह मिनी यांखई मंगा पुंग निपान मिनी निफू मणिपुरी फिल्म सै थमजरी लानथोक्तुर ताहनजगनी रेडियो डॉक्यूमेंटरी उमंगलाय हराव तरीसुब तांकक पुंग अयुकी पुंग मापन अईब लाइफ्राकपम अशोक कुमार थोरम पुथोप थांजम इबोसा सिंह पुंग मापन मखाय थमजरी गायखो ताखीसी पुंग तरा इंग्राजी वारी वताय ताहनजगनी एंथ्रोपोलॉजी थियोलॉजिक सियान स्कॉलर स्पेशलाइजिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑथर कलम निब रामी देसाई उन्दन वरी साब उनबीगदब कक्षिंग ताबम रितेश शर्मा पुंग तरानिथोय मिनी तरा एन सी आर टी की तेंबांग लोइनन संतोषब थोरम उमंग ताहनजगनी पुंग तरानिथोय मिनी निफू मणिपुरी फिल्म इसई लानथोसगनी।

फिल्म से कदोल की मरी सुबता तहनजरी कावर की फिल्म से देखी माधुरी की नाइटों खोंजेलता अरकेला सगोल सेमन सैरिंग बब दिरन बी थोना न सैरांबा इसे यमा कदोल तमजरी

0: ta han sacrifice ke sigolina na nga sigolina ti tabi ni bisina ya se pensa ma ti poskari kutan kan bir pa mani free film sizing ta han jaba mata nga solution jari
1: palu bana tha moi ama kan lu pani nu si
0: akas pani pal hozi ni mitagi pung tara minit ama sakki pagalina na akas pani phali kang la senal ki nga pigani pung tara makai tara ga mini kuntha ma thoi sat khipa galoi nanda akas pani phal ki kangla sel ngi tharam sing sanduk sa nab lo shin jana bagi pung phom de yok shilakri haying inga gi ni pan ba sakap tal sing masa pani phuni pan me tara ni pan ni to ka ba ni me ayu ki pung manga mini kuntha sa pa matam de akas pani phal ki kangla sel ki tharam sing sanduk pa hu sa gani pung phom madu phaw da di kai na ba ya thang ni jari Vinabirasi, Jai Hind.
2: रूठा न करो से ये फिल्म आई थी 1967 में। दोस्तों कहते हैं कि जब कोई चेहरा महज चेहरा नहीं होता, वो एक जज्बात बन जाता है, एक ख्वाब, एक तस्वूर बन जाता है, तो फिर हम सब के जहन में ऐसे ही अल्फाज निकल कर अपनी जबान से निकलते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो नजरों में बस जाते हैं और फिर दिल से उतरते ही नहीं। आज की इस शाम को एक ऐसे ही चेहरे के नाम करते हैं जो खूबसूरती का तर्जुमा है और मासूमियत का आईना। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं वही नगमा 1969 के फिल्म रूठा ना करो का, वो नगमा जो आपके कानों से होता हुआ सीधे दिल में उतर जाता है, और दिल की बात तो सिर्फ दिल से ही हो सकती है। इस गीत को लिखा है हजरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है सी रामचंद्र साहब ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की।
3: दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
4: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
3: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
4: तब ठीक है,

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार सदाबहार नगमों की, वो रोमांटिक महफिल जिसमें आपको हम लेकर चलते हैं एक ऐसे ही दौर में, एक ऐसे ही नगमों की तरफ जो हमेशा आपके दिल के करीब रहे हैं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:40 और 42 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि वो महकता एहसास जो हर सुबह की तरह दिल को सुकून देता है और हर रात की तरह दिल की गहराइयों को छू जाता है, ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं। वो फूल जो रात के अंधेरे में खिलता है और सुबह होते ही जमीन पर बिखर जाता है, कुछ अधूरे ख्वाबों की तरह, कुछ मीठी यादों की तरह। आज के इस हर सिंगार की महकती शाम में चलिए यादों के उस दरीचे को खोलते हैं जहां इश्क मासूम होता था और दिल बस धड़कता था, वो भी बिना किसी खास वजह के। आज के सफर में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ जिसे सुनकर आज भी दिल वही मासूमियत महसूस करेगा, वह एहसास जो खामोशी में भी बोल उठता है और जिसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। तो चलिए इस जादुई सफर के अगले हिस्से में हम बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत नगमा फिल्म आपकी कसम से। आवाजें हैं किशोर कुमार साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल हर सिंगार में। सदाबहार गीतों की वो महफिल जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, बार बार गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो सदाबहार नगमे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। उन्हीं नगमों में से हम आपके लिए चुन कर लाते हैं उन खास गीतों को जो आपके दिल के बेहद करीब है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नगमे की जो सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक एहसास है, एक पुकार है उस दिल की जिसे मोहब्बत ने छू लिया हो। दरअसल साल था 1967 का और स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, वो नाम था देवानंद। साथ थे खूबसूरत वैजंती माला और फिल्म थी जेल थिप। और इस फिल्म ने उस दौर के थ्रिलर सिनेमा को एक नई पहचान दी। हालांकि इस फिल्म में और भी कलाकार थे जिसने इस फिल्म को और भी खूबसूरत अपनी अदाकारी से बना दिया। उनमें थे अशोक कुमार साहब, तनुजा, हेलन फरियाल, अंजू महेंद्रू, नाजिर हुसैन, प्रतिमा देवी, सप्रू, जगदीश राज और सचिन वगैरह। यह फिल्म बेहद खूबसूरत फिल्म थी और इसके नगमे भी बहुत ही प्यारे थे। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से चीजों को दिखाया गया वो शायद बार बार आप नहीं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म की कि इसके नगमे बड़े प्यारे थे और वो नगमे ऐसे थे जो सीधे दिल को छू गए। उन्हीं नगमों में से एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तकरीबन इस फिल्म में 8 नगमे हैं, उनमें से ही एक नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, दिल पुकारे आ रे यार। इस गाने को अपनी आवाज़ दी लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब ने, जिनकी आवाज़ मानो सीधे कानों से उतरते हुए दिल में उतर जाती है। संगीत दिया था SD बर्मन साहब ने, जिनका हर सुर जादू की तरह असर करता है। और इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, जो मोहब्बत को अल्फाज देने का हुनर जानते थे। तो आइए उसी नगमे को हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में। ये बेहद खूबसूरत नगमा लता जी और रवि साहब की आवाज़ों में आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हर सिंगार की। हर सिंगार की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा आपके लिए बेहद खूबसूरत फिल्म गुमनाम से। यह फिल्म आई थी 1965 में, इसमें इस गीत को गाया है लता जी ने।

गुमनाम फिल्म के इस नगमे को गाया था लता मंगेशकर जी ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हर सिंगार की इस महफिल से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार और समाचारों के बाद आप सुनेंगे ठीक 11:10 पर खास प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन के बात कार्यक्रम का फॉलो अप प्रोग्राम होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 111। तो सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम सब जानते ही हैं कि ये कार्यक्रम मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में पवन ऊर्जा का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, भारत की बदलती और मजबूत होती स्थिति क्या है और क्या नए बदलाव हो सकते हैं उसका उल्लेख किया है। आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें पवन ऊर्जा का उल्लेख है।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज मैं एक ऐसी शक्ति की बात करना चाहता हूं जो अदृश्य है लेकिन जिसके बिना हमारा जीवन एक पल भी न चले। यही ताकत भारत को आगे बढ़ा रही है। यह हमारी पवन शक्ति है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, वायुर्वा इति व्यष्टि ही वायुर्वै समष्टि है। अर्थात वायु सिर्फ एक तत्व नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा है, यह समष्टि की शक्ति है। साथियों, आज यही पवन शक्ति भारत के विकास की नई कहानी लिख रही है। भारत ने हाल ही में पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब भारत का विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पिछले एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़ी है। विंड एनर्जी में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है। साथियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया में चौथे स्थान पर है। यह हमारे इंजीनियरों की मेहनत है, यह हमारे युवाओं का परिश्रम है, यह देश की सामूहिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। साथियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश के अनेक राज्य इस सेक्टर में अपना परचम लहरा रहे। गुजरात के कच्छ, पाटन, बनासकांठा जैसे क्षेत्र जहां पहले सिर्फ रेगिस्तान नजर आता था, आज वहां बड़े रिन्यूअल एनर्जी पार्क बन रहे हैं। इसका लाभ युवाओं को मिल रहा है, नए अवसर बन रहे हैं, नई स्किल विकसित हो रही है, रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, भारत के विकास के लिए सौर और पवन ऊर्जा जरूरी है। ये सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य की सुरक्षा है। इसमें हम सब की भूमिका है। हमें बिजली बचानी है, हमें स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनानी है। देश में हर स्तर पर ऐसे प्रयास जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से बड़ा बदलाव आता है।
1: तो इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए पवन ऊर्जा को थोड़ा और समझते हैं, इस बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे विशेषज्ञों को। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, साथ ही आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक भी हैं। डॉक्टर प्रबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी।
1: और साथ ही हमारे हैं यहाँ पर अतिथि ओम तनेजा जी। आप उद्यमी हैं और आपका अनुभव जो है पवन ऊर्जा क्षेत्र में है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय रूप से आप शामिल रहे हैं और भारतीय पवन टर्बाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ओम जी।
4: धन्यवाद।
1: जब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, जिसमें से कुछ तकनीकी प्रश्न हैं, कुछ व्यवहार से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि हवा से तो हम सबका रिश्ता है, लेकिन हम इसे ऊर्जा क्यों कहते हैं, पवन ऊर्जा का सही अर्थ क्या है, और ये मैं जानना चाहती हूँ प्रबीर जी आपसे।
3: ऊर्जा हम उसी को कहते हैं जो हमारे लिए कोई भी काम को सहज कर दे या कोई भी काम को करने में हमारा सहायता करे
1: जी।
3: तो उसमें पवन ऊर्जा एक प्रमुख ऊर्जा है और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराने है। अगर हम मानव के इतिहास में देखें कि कौन सा ऊर्जा को हम पहले इस्तेमाल करना सीखे तो पवन उसमें से अग्रणी है। पुराने जमाने में पहले पवन के माध्यम से हमारा जहाज चला करते थे, पवन के माध्यम से पवन चक्की चलाया करते थे जिसमें उन्होंने ग्राइंडिंग करना शुरू किया। बट अभी मॉडर्न एज में हमने वही पवन को इस्तेमाल करके उससे हम बिजली बनाते हैं और बिजली ऊर्जा हमारा क्या सहायता करता है ये शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर घर में प्रतिक्षण हम बिजली का उपयोग करते हैं
1: जी।
3: तो वही बिजली हम पवन से बनाते हैं तो वही ऊर्जा फिर हमारा प्रति काम में हमें सहायता देती है
1: जी। इसलिए हम पवन की जो शक्ति है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं जी। हमने अक्सर वीराने में विशाल पंखे घूमते हुए देखे हैं और कई बार मन में सवाल आता है कि ये कैसे काम करते हैं, यहाँ एकदम वीराने में सुनसान जगह में इनकी देखरेख कैसे हो रही है, ये यहाँ पर क्यों है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ओम जी, जो शुरुआत है पवन ऊर्जा की वो कैसे होती है, जिन्हें हम टर्बाइन कहते हैं या विशाल पंखे कहते हैं, ये कैसे काम करते हैं?
4: अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कि ये पवन ऊर्जा कब से कहाँ से शुरू हुई है। ये असल में 1960 के दशक से ये कुछ हमारे साइंटिस्ट थे CSIR के और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरीज के, जिन्होंने शोध करके हमारे यहाँ पवन ऊर्जा कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसके ऊपर कार्य किया जाए, उसमें किया था। तो पवन संसाधन जो हैं उसके लिए हमारी एक साइंटिस्ट थी अन्ना मनी जी, जिन्होंने बहुत कार्य करके और पूरा उसका जो है एक संकलन किया है और उस संकलन को उन्होंने 5-6 वॉल्यूम्स में डाल के और जो आज के दिन हमारे लिए एक किस्म से बाइबल जिसे कहते हैं वो है। पर उसके बाद उसके ऊपर बहुत काम हुए हैं, वो अलग चीज़ है, बट एक शुरुआत का जो था वो उनका था। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे पहला जो है 1985 में एक पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया और समय के साथ सरकार ने इसमें कई बदलाव किए। हमारे यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बना था जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंदर था, उसके बाद उसका नाम बदल के हमने MENS किया और उसके बाद आज के दिन वो MNRE कहलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उसका नाम है। ये 2006 से इसका नाम ये प्रचलित है। अब भारत में इस नवीनकरणीय ऊर्जा जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है
1: जी।
4: पवन ऊर्जा का जनरली फॉसिल फ्यूल या जिसे बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, जैसे कोल हुआ
1: जी।
4: या और इस तरह के जो उनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके आयात और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का एक प्रभावी समाधान माना गया है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ गैर प्रदूषणकारी और सस्ती ऊर्जा स्रोत है जो ईंधन और परिवहन पर निर्भरता को कम करती है और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी या हरित बिजली उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसमें एक खास बात है कि हमें इसके अंदर पानी का उपयोग भी बहुत कम करना पड़ता है। पानी का उपयोग जो है खाली कुछ एक कार्यों के लिए ही किया जाता, सफाई वगैरह के लिए। अब इसका जो नीतिगत विकास हुआ है वो 1993 में हमारे मंत्रालय ने एक फिक्स टैरिफ बनाया था 2.25 रुपये का, जिसमें प्रति वर्ष 5% वृद्धि का प्रावधान था और उसके साथ साथ ही एक एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो एक ऐसा था कि आप जो भी कमाई करते हैं उसके अंदर जो उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता था वो 80% तक का था उस समय, और उसमें जो है पहले 100% था फिर उसको 80% कर दिया गया था, और जिसके लिए खुदरा निवेशकों को जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आकर्षित किया। पवन ऊर्जा जनरेशन के लिए या उसके उत्पादन के लिए हम ये विंड टर्बाइन्स का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
4: जो हमारे उस जगह पर जहां हमें हमारी स्टडी या हमारे एक किस्म से उसका अध्ययन किया जाता है
1: जी।
4: जो ये बताता है कि किस जगह पे हमें हवा का पवन का ज्यादा जोर मिलेगा
1: जी।
4: जिससे हम ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न कर पाए
1: जी।
4: तो हमने एक स्टडी करते हैं, उस स्टडी के हिसाब से जगह ढूंढते हैं कि किस जगह पर हमें इसको लगाना
1: जी।
4: अब आप जब लगाना चाहते हैं तो उसके लिए विंड टर्बाइन्स जो बनाते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनके हिसाब से कि हमें किस जगह पर कितना जनरेशन मिलेगा इसका अध्ययन पूरा उसका किया जाता है, जिसके लिए एक अच्छी खासी साइंटिफिक स्टडी
1: जी। तो इस बारे में हम और भी जानेंगे। अब ये बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं?
4: आई थिंक मेरे हिसाब से हवा के साथ साथ
1: जी हम पवन ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं।
5: हवा के साथ साथ,
6: अरे रे रे,
5: घटा के संग संग,
6: संभलना,
5: हवा के साथ साथ,

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में जो बता रहे हैं पवन ऊर्जा कैसे हासिल होती है, इसका महत्व क्या है और बदलते दौर में किस प्रकार से हम अपने काम करने के तरीकों को और भी अच्छा बना रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप वैज्ञानिक हैं, पवन ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर भी हैं और साथ हैं ओम तनेजा जी जो उद्यमी हैं और पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्य करते रहे हैं। तो प्रबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की तो हमने अक्सर बड़ी बड़ी टर्बाइन्स को देखा है, मन में सवाल आता है कि वीराने में ये खड़ी हैं, कैसे काम करती हैं, एक पूरा तंत्र क्या है, हम चाहेंगे कि आप हमें इस बारे में बताएं।
1: धन्यवाद नीलिमा जी, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूंगा।
0: जी,
1: शायद आप अपने बचपन में कागज से छोटे छोटे पंखे बना के उसको कहीं पे जहाँ पे हवा चलता है वहाँ पे रखे होंगे तो वो घूमते हुए नजर आए होंगे।
0: जी,
1: इनफैक्ट मैंने अपने बचपन में बरगद की जो पत्ते होते हैं उसको दोनों साइड से एक विशेष भाव से काट के उसके अंदर एक दिन आप उसको
0: तीली लगा के रखिए
1: तो ये अपने आप घूमने लगता है जब आपका हवा चलता है। तो इसे पीछे का जो विज्ञान है वो ये है, उसको एरोडायनामिक्स बोलते हैं इंग्लिश में।
0: जी,
1: जो आपने अक्सर इवन हवाई जहाज का पंखों में वो देखा होगा वो शेप, तो उसी शेप में ये जो विंड टर्बाइन्स होते हैं उसको हम ब्लेड बोलते हैं, जो पंखा आप बताएं उन्होंने तीन पंखे होते हैं उसमें, ये तीन ब्लेड उसी संरचना के साथ बनते हैं जो हवाई जहाज के पंखे होते हैं। तो ये कि उसको एक विशेष एरोडायनामिक शेप देता है जिसके वजह से जब हवा चलता है वो ये हवा का जो शक्ति है वो इसको घुमाने लग जाते हैं।
0: जी,
1: और कभी भी बिजली पैदा करने के लिए हमें जो जनरेटर है उसी जनरेटर के

0: एमपी भी हो
1: जी,
0: वो हर जगह पे काम करता है
1: जी। तो ये जो पवन चक्कियां हैं अल्टीमेटली ये बिजली आपूर्ति हमारे घरों में कर रही हैं, और इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी टीम काम करती है, और मंत्रालय जो है इससे जुड़ी हुई नीतियों को देखता है। मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर टर्बाइन्स जो हैं, पवन चक्कियां जो हैं, इसमें प्राइवेट क्षेत्र काम करना चाहे तो किस तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं, क्या नीतियां हैं?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है, और इनफैक्ट आज हम देख प्राइवेट सेक्टर ही इसको ड्राइव करता है
1: जी।
0: शुरुआती दिनों में जैसे तनेजा जी ने भी बताया, हमारा बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट से सहायता दी जाती है, वो तकनीकी रूप से हो या आर्थिक सहायता के रूप से हो, तो मंत्रालय के जो शुरुआती दिनों थे, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, उस समय पहले जब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नया था, तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत थी कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वेदर इट विल बी ए प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट, तो उसी समय मंत्रालय उसको आर्थिक सहायता भी देता था। फिर कुछ नीतिगत सहायता मिला, उसको हम जीबीआई कहते हैं, जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव। जैसे आप एक जेनरेटर है तो जितना यूनिट आप ग्रिड को देंगे हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगा, बट ये सब सहायता 2017 के बाद बंद हो चुके हैं, क्योंकि तब तक विंड एनर्जी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उभर चुका था। तो 2017 के बाद आज के डेट पे जो नीति है गवर्नमेंट का, उसको हम बिडिंग रेजिम कहते हैं
1: जी,
0: मतलब इट इज ए मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जितना हमें बिजली चाहिए होता है मंत्रालय के तरफ से, हमारा चार हम उनको रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कहते हैं
1: जी,
0: जिसमें हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, एसजेवीएन है, तो वो अपने प्रतिवर्ष बिडिंग लेके आते हैं कि उनको कितना मेगावाट का या कितना गीगावाट का पवन ऊर्जा चाहिए। देन जो प्राइवेट सेक्टर है वो उस बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो हमें लो टैरिफ सबसे ऑफर करता है
1: जी,
0: वो प्रोजेक्ट उन्हीं को ही मिलता है। तो इसके कारण होता क्या है कि हमें बिजली सस्ते से सस्ते में मिलता है
1: जी,
0: जो हमारे डिस्कम को, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो स्टेट्स में काम करते हैं, और ये बिजली अल्टीमेटली उन्हीं को खरीदना पड़ता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर पे उसको उपलब्ध कराते हैं।
1: तो इसके लिए बिडिंग होती है।
0: बिल्कुल
1: जी। और मैं जानना चाहूंगी कि जगह का चुनाव कैसे किया जाता है कि कहाँ पर टर्बाइन्स जो हैं वो लगेंगी, या इससे जुड़ी हुई रिसर्च कहाँ पर की जाएगी, तो उस जगह का चुनाव कैसे करते हैं?
0: हमें मंत्रालय को इसमें तकनीक सहायता देने के लिए हमारा एक सेंटर है, जिसको हम पहले इसका नाम था सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, सीवेट के नाम से शुरू हुआ था
1: जी
0: सन 2000 में, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो चेन्नई में स्थित है
1: जी।
0: तो इसका जितने भी टेक्निकल काम है या मंत्रालय को जो टेक्निकल सहायता है वो उसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से होता है। और कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा का शक्ति ज्यादा है, जो वहाँ पे हमें पवन ऊर्जा या पवन चक्की बिठाने के लिए उपयुक्त है कि नहीं
1: जी,
0: उसको पता करने के लिए हम उसको बोलते हैं रिसोर्स असेसमेंट, जो कि मिनिमम एक साल का काम होता है। तो वहां पे हम मास्ट लगाते हैं, विंड मास्ट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगा हुआ होते हैं, जैसे आपका एनीमोमीटर होता है विंड का स्पीड को मेजर करने के लिए, विंड वेन होते हैं जो विंड का डायरेक्शन को मेजर करता है, और जब भी कोई पवन चक्की का प्रोजेक्ट लगता है तो उसमें जो दूसरा एटमोस्फेरिक पैरामीटर से, जैसे कि आपका रेन गेज है, प्रेशर गेज है, क्योंकि एयर का कितना डेंसिटी है वो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है, तो ये सबका मेजरमेंट होता है एक साल तक
1: जी।
0: फिर उसी बेसिस में हमें पता लगता है कि इस साइट पे अगर हम पवन चक्की लगाते हैं तो हमें कितना उत्पादन होगा बिजली का
1: जी,
0: और उसी हिसाब से प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा कि नहीं होगा। बट ये तो मैंने बहुत ही टेक्निकल रूप से समझाने की कोशिश किया, अगर एक लेमैन लैंग्वेज में भी हम पता कर सकते हैं, जैसे ये कहाँ पे मास लगाएंगे उससे पहले हम देख के भी बता सकते हैं कि कोई जगह यहाँ पे पवन है या नहीं है,
1: तो यानी जहाँ हवा का बहाव बहुत तेज होता है,
0: तेज होता
1: जहाँ
0: है।
1: हम महसूस कर पाए कि अक्सर यहाँ हवा चलती है, और कोई ऊंचा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो आसपास, खुली जगह हो, तो उस हिसाब से हम जगह का चुनाव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला, जैसे मास्क लगाने से पहले हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे जब जगह का भ्रमण करते हैं वो इसी चीज को ध्यान में रखते हैं, इवन पेड़ का भी शेप को देखते हैं
1: जी,
0: जहाँ पे कंटिन्यूअस विंड होता है आप वहां पे देखेंगे जो पेड़ होते हैं
1: वो
0: एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुका हुआ रहते हैं, तो वो एक प्राइमरी साइन है
1: जी,
0: किसी
1: उससे
0: भी इंजीनियर
1: हवा
0: के
1: की
0: लिए।
1: दिशा पता चलती है कि किस दिशा में प्रवाह ज्यादा होता है, तो फिर वो चक्कियों को उसी दिशा में लगाया जाता है जी। बहुत अच्छे से हमें एक छवि आपने दी है, बचपन से लेकर वैज्ञानिकों तक आप लेकर गए। अब ये बताएं कि कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
0: तो हम पवन की बातें करते हैं तो हमारा पवन का उत्पादन सबसे ज्यादा सावन के महीने में ही होता है
1: जी,
0: ये शायद आपके श्रोताओं को जानकर एक अच्छी जानकारी होगी कि पवन हमारा जो चार महीना होता है
1: जी
0: सावन का, उसी समय सबसे तेज चलते हैं और सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करते हैं,
1: वाह,
0: तो सावन का महीना
1: जी।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में स्वागत है। और अब हम ये समझ गए हैं कि सावन के महीने में पवन करे शोर, तो ये जो शोर है पवन का, ये ऊर्जा उत्पादन के बहुत काम आता है और हमारे विशेषज्ञों ने हमें ये आज बताया है, क्योंकि कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा की। और कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रबीर कुमार दास, आप पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक हैं, और साथ ही ओम तनेजा जी हैं जो कि उद्यमी हैं, पवन ऊर्जा क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से जुड़े रहे हैं। ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि अभी प्रबीर जी ने बताया कि ये आज तो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हम मान सकते हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तब आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप पवन ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े, और उस वक्त क्या चैलेंजेस आपके सामने थे?
1: उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ,
0: जी,
1: हरित एनर्जी की तरफ जाना जरूरी है।
0: हुँ.
1: क्योंकि जिस संस्थान में मैं कार्यरत था वहाँ थर्मल पावर प्लांट जो कोयले से चलते थे, उसके बाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पानी से चलते थे, इन पर कार्य हो रहा था। तो हमारे एक निदेशक मंडल ने कहा कि हम लोगों को पवन ऊर्जा या सोलर ऊर्जा पे भी कार्य करना चाहिए।
0: जी।
1: तो उस समय पवन ऊर्जा पे हमने कार्य करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया, उसमें किया, और ये देखा कि पवन ऊर्जा एक समय तक, लगभग जिसे कह सकते हैं कि 5 या 6 वर्ष के अंदर, हमें जो उस समय इसके टैरिफ थे, उस समय चीजें थी, 5 से 6 वर्ष के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने किया हुआ है, उसको हम वापस प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो देखिए, कोई भी एक उद्यमी रहता है उसको अपना प्रॉफिट और ये भी देखना होता है।

0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक ऐसा उस समय उद्यम था जिसमें हमें लगा कि हम इसके अंदर कार्य करके दो तरह के काम कर रहे हैं। एक तो हम जो है जिस जगह अपना विंडमिल या ये लगा रहे हैं
1: जी
0: उस क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा होगा, जो हमारा एक किस्म से CSR एक्टिविटीज हो जाती है।
1: जी
0: उसी के साथ साथ ही हमें जो है और पवन ऊर्जा का जो है लाभ भी मिलेगा, और
1: जी
0: हम जो है इसको और इसी विषय पे इसी के प्रेरणा को साथ में रखते हुए हमने पवन ऊर्जा के अंदर कार्य शुरू किया,
1: जी
0: और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ 60-70 MW के पावर प्रोजेक्ट लगाए। पावर प्रोजेक्ट लगाने में हमें थोड़ा समय लगा,
1: जी
0: पर जो मंत्रालय या और जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनकी सहायता से हमने बहुत जल्दी ही इस कार्य को प्राप्त कर लिया। और
1: जी
0: उस समय हमें जो है विभिन्न सरकारों के उनका भी अच्छा हमें साथ मिला। मंत्रालय की जो उस समय की योजनाएं थीं, जो एक किस्म से हम लोगों को फैसिलिटी थी, बेनिफिट्स थे, उन सब का भी हमें जो है भरपूर उपयोग किया, और हमने पाया कि हम जो है इस चीज के ऊपर अच्छा कार्य कर
1: कर
0: सकते हैं
1: सकते
0: और
1: हैं
0: कर रहे हैं। और
1: जी
0: शायद साथ साथ हम देश में जो है अपने प्रदूषण की समस्या का भी एक निदान ढूंढ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। जहां हम अभी कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर कम हो, हम कम से कम आयात करें। ऐसे में हमारे पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जिसे अक्षय ऊर्जा हम कहते हैं, कैसी ऊर्जा जिसका कभी क्षय नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगी, उस पर हमारी डिपेंडेंसी रहे, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो यहां मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद जितना हम समझ पा रहे हैं कि पवन ऊर्जा एक ऐसी चीज है जहां लगातार आपकी उपस्थिति की जरूरत नहीं है, कैश फ्लो आप देख सकते हैं, वो मैनेज करना है। ऐसे में अगर कोई नया उद्यमी जुड़ना चाहे तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: जैसा डॉक्टर प्रबीर ने बताया कि आजकल जो है
1: जी
0: बिडिंग का
1: जी
0: एक तरीका अपनाया जा रहा है जिससे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, वो उसमें भाग लेते हैं।
1: जी
0: इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगभग 70% तक जो इन्वेस्टमेंट हुई है एक छोटे उद्यमियों की रही है। इवन उसमें कुछ जो है ना इंडिविजुअल भी है, अकेले
1: जी
0: भी हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा कि कई कलाकारों ने अपना ये जो है इस क्षेत्र के अंदर अपना
1: इन्वेस्टमेंट किया है
0: इन्वेस्टमेंट किया है,
1: जी
0: और वो जिसका 25 वर्ष तक जो है उनको फायदा हो रहा है, उनके अपने इनकम टैक्स में फायदा हुआ है जो स्कीम वगैरह थी।
1: जी
0: और इसकी वजह से जो आसपास के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र या जिन जगह पे लगा, वहां भी बहुत ज्यादा अच्छा उत्थान हुआ है, बहुत अच्छी उस जगह का प्रोत्साहन मिला है। वहाँ अच्छे खासे जो है लोगों का, जिसे बोलते हैं नौकरियां, या उनका कार्य करने का क्षेत्र बना है,
1: जी उन्हें रोजगार मिलता है इसकी
0: रोजगार
1: वजह
0: मिलता
1: से।
0: रहा है। पवन ऊर्जा जहाँ कहीं भी लगती है, आपको मैं बताऊं, चारों तरफ से मेन रोड से हर एक पवन चक्की के ऊपर चलने का एक रास्ता बनाया जाता है,
1: जी
0: और जो है उस रास्ते में लगभग कई बार वो रास्ता एक एक 1.5-1.5 किलोमीटर का भी हो जाता है। तो रास्ते में कई उनको उद्यम, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको कुछ ना कुछ काम में मिल जाता है।
1: जी
0: उसके आसपास का क्षेत्र अच्छा डेवलप हो जाता है, अच्छा उसके अंदर उत्थान हो जाता है।
1: जी हम डिपेंडिंग इंडस्ट्रीज जिन्हें बोलते हैं, जो किसी एक मुख्य काम से जुड़ी रहती हैं परोक्ष रूप से, यानी पवन ऊर्जा की वजह से जहां टर्बाइन्स लगेगी वहां पहुंचने का रास्ता कोई तैयार करेगा, रास्ते में खाने पीने का सामान भी मिलेगा, फिर उस रास्ते पर वाहन भी आए जाएंगे, तो इसकी वजह से, परिवहन व्यवस्था की वजह से कई लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, ये आप कह रहे हैं। जी तो बहुत ही अच्छी जानकारी ये है हमारे लिए। मैं अब प्रबीर जी आपसे ये जानना चाहूंगी, पवन ऊर्जा आपने बताया कि पवन चक्कियां चलती हैं और उससे हम बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन क्या इन पवन चक्कियों को कभी पवन की वजह से ही नुकसान होता है? कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान में पवन चक्की अपने स्थान से उखड़ गई या उनके ब्लेड्स प्रभावित हुए और उसके बाद बिजली उत्पादन कम हो गया, क्या ऐसा भी कभी होता है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा लगता है बट
1: जी
2: ऐसा होता नहीं है, क्योंकि
1: जी
2: जो पवन चक्कियां हैं वो ऐसे ही डिजाइन होता है ताकि वो जो आंधी तूफान को भी झेल जाए,
1: जी
2: तो आंधी तूफान में भी वो गिरे ना। बट हाँ, बिजली उत्पादन थोड़ी देर

0: के लिए शायद बंद हो सकता है,
1: जी
0: क्योंकि जो पवन चक्की काम करता है उसमें ये ऑटोमेटिक कंट्रोल है कि जब पवन एक गति से आगे हो
1: जी
0: तो उसको वो बंद कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे, गिरे ना
1: जी।
0: तो फिर जैसे पवन आंधी तूफान चला गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है
1: जी।
0: तो थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, बट अभी तक आपको जान के खुशी होगी कि जो हमारा चक्रवात आया था अरबियन सी में तो उसमें भी हमारा एक भी पवन चक्की नहीं गिरा था
1: जी।
0: तो वो ऑलरेडी डिजाइन में इनबिल्ट है। बट हैविंग सेड सो, ये जब मैं बोलता हूँ तो आपको ये भी शायद ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे हमारा जो पवन है उसका गति इतना भी ज्यादा नहीं है जितना यूरोप में होता है, क्योंकि हम जो इक्वेटोरियल कंट्रीज होते हैं हमारा यहाँ पे पवन जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपने सुना होगा
1: जी।
0: कि दिन में जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमारा जो समुद्र है वो थोड़ा ठंडा रहता है
1: जी।
0: जैसे कि हम सबको पता है कि भारत जो है हमारा इक्वेटोरियल रीजन में हम रहते हैं, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ट्रॉपिकल कंट्री में होता क्या है कि हमारा पवन का गति इतना ज्यादा नहीं होता है, हमें सिर्फ सावन के महीने में जो हमारा मॉनसून होता है उसी समय ही हमें पवन का गति ज्यादा रहता है, बाकी सब महीनों में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के कारण ही हमारा हवा तेज होता है। इसीलिए हमारे जो ज्यादातर पवन की संभावनाएं हैं वो कोस्टल स्टेट्स में ही है, तो ज्यादातर आज के डेट पे जो भारत में लगे हुए हैं पवन ऊर्जा की प्रोजेक्ट्स वो 8 ही स्टेट में ही सीमित है
1: जी।
0: अभी एक दो स्टेट में और अभी काम चल रहा है जैसे कि उड़ीसा, तो वहां पे भी शायद अगले एक दो साल में आपको दिखेगा कि वहां पे भी लगा हुआ है
1: जी।
0: लग जाएगा।
1: ये कौन से 8 स्टेट हैं?
0: ये है हमारा सबसे आगे तो हमारा गुजरात है आज के डेट पे, उसके पीछे है तमिलनाडु, उसके पीछे है महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और देन मध्य प्रदेश
1: जी।
0: तो यही सब स्टेट्स है जहाँ पे ऑलरेडी अभी पवन ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। तो जो हम बात कर रहे थे साइक्लोन, तो हमारा इंडिया जैसे कंट्री में क्या है कि पवन जो है ये मॉडरेट है, ऐसा नहीं है कि कम है, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा है। तो हमारे यहाँ पे जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से लेके 7-8 मीटर पर सेकेंड तक होता है, तो इसको हम एक्चुअली मॉडरेट मानते हैं। तो ये विंड में हम टेक्निकली बोलते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3 साइट्स है, तो जो क्लास 1 होता है वो सबसे बेहतर साइट्स होते हैं जहाँ पे पवन की गति बहुत ज्यादा है, और क्लास 3 साइट्स होते हैं जहाँ पे मॉडरेट है। तो हमारा जो विंड के साइड से वो मॉडरेट है, एट द सेम टाइम हमें साइक्लोन भी देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो हमारे जो पवन चक्कियों को उस हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है, तो उसका परिणाम होता क्या है कि हमें थोड़ी सी वो जो डिजाइन है उसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा
1: जी।
0: बोलने का मतलब कि हमारा जो उसका टावर हो, गियर बॉक्स हो, ब्लेड हो, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं पवन चक्की का, वो सब एकदम मजबूत बननी चाहिए ताकि वो साइक्लोन को देख पाए, वो साइक्लोन में गिरे ना।
1: ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं क्या इसके लिए हम मशीनरी आयात करते हैं या ये भारत में निर्मित है सब?
0: बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात को बताते हुए आपके श्रोताओं को कि भारत शायद विश्व में 5 या 6वां कंट्री है जहाँ पे सारे के सारे कंपोनेंट इंडिया में ही बनते हैं
1: जी।
0: और इनफैक्ट हम आयात नहीं करते, हम निर्यात करते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो मेरे पास डाटा है हम 12,000 करोड़ से ज्यादा कि पवन चक्की या पवन चक्की का कंपोनेंट भारत से बना के अलग कंट्री को निर्यात करते हैं, और जिसमें यूरोप भी है, यूएसए भी है, हम उस कंट्री को निर्यात करते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम आयात नहीं करते, तो इसको बनाने के लिए जो कुछ कंपोनेंट या इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स है, तो वो सब हम कुछ आयात भी करते हैं
1: जी। तो एक तरह का संतुलन इसमें बना हुआ है और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है जी। मैं यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम सौर ऊर्जा से अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा के लिए हम हर किसी को प्रेरित करते हैं कि वो अपने ओर से योगदान करें, और उनके पास जो भी स्थान है, छोटा स्थान भी हो, घर की छत है या खेत है, वहां से वो सौर ऊर्जा जो है उसमें योगदान कर सकते हैं, सोलर पैनल्स वहां लगा सकते हैं। क्या पवन चक्की के लिए भी ऐसा कुछ संभव है कि छोटे स्तर का कुछ उत्पादन वो कर पाए?
0: बिल्कुल संभव है, बट ये सोलर के तरह जितना सोलर अभी हर घर में आपको देखने को मिल जाएगा, शायद पवन चक्की का जो छोटा संरचनाएं है वो आपको नहीं मिलता देखने के लिए। उसका बहुत सारे कारण है, बट जो सबसे प्रमुख कारण होगा वो यही है कि कितना कॉस्ट पे आपको मिल रहा है। जैसे अगर सोलर और विंड, जाहिर सी बात है कि हर कोई तुरंत कंपेयर करेगा कि मेरे पास अगर कुछ पैसा है तो वो पैसा से मैं सोलर लगाऊं या विंड लगाऊं। अगर आप सोलर लगाते हैं तो आपको जेनरेशन ज्यादा होता है, अगर विंड लगाते हैं तो कम होता है, तो आपका नेचुरल जो प्रेफरेंस है वो सोलर की तरह चला जाता है। बट ऐसा नहीं है कि विंड से नहीं हो सकता, इनफैक्ट अगर जो छोटे छोटे विंड टर्बाइन्स भी मार्केट में उपलब्ध है जो 1 किलोवाट से लेके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 10 किलोवाट तक, इवन 100 किलोवाट भी आता है, 500 वाट, 200 वाट, ये सब छोटे छोटे पवन चक्के भी मार्केट में उपलब्ध है। बट इसको जब आप सोलर के साथ कंपेयर करेंगे थोड़े महंगे लगेंगे
1: जी।
0: बट अगर मान लो आप रिमोट एरिया में हैं जहाँ पे आपको मेन ग्रिड नहीं मिलता है या मेन ग्रिड से बिजली जो है कंटिन्यूअसली नहीं मिलता है, तो उस क्षेत्र में अगर आप पवन चक्की, सोलर और बैटरी ये तीनों को लगा देते हैं तो आपको शायद ग्रिड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब आप अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में अपने ही घर के लिए, तो ये संभव है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस जगह पे है, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते है और आप कितना बड़ा अच्छा सिस्टम घर पे बनाना चाहते हैं।
1: जी ओम जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जो ये संघ है आपका, भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ, ये किस प्रकार से काम करता है, क्या भूमिका है इसकी?
2: ये एक संस्था है
1: जी,
2: जो जितने भी हमारे टरबाइन के निर्माता हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखे हुए है। समय समय पर जो उनके परेशानियां या चीजें हैं उनको मिनिस्ट्री के साथ या इन सब से साथ मिलके या और जगह पे मिलके, जैसे डिस्कॉम्स हैं, तो इन सब के साथ मिलके एक उसका सोल्यूशन या एक निकालते हैं
1: जी।
2: इसमें जितने भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सभी जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: मैं आपको, जैसे प्रवीर जी अभी बता रहे थे, मैं आपको एक चीज और बता दूं, लगभग 70-80% तक चीजें जो हैं कंपोनेंट और ये सब है
1: जी,
2: हम यहाँ भारत में ही निर्माण कर रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड भी जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। ताकि जो अभी बता रहे थे कि ज्यादा हवा चल रही है तो सब में कैसे उसको रोका जा सके, तो ये सारी चीजें जो है ना हम इन सब को अपने मंत्रालय के दिशा निर्देशों अनुसार हमारे जो एक मशीन्स हैं उनका टेस्टिंग और उनकी जो एक टाइप टेस्ट रहते हैं
1: जी,
2: जो हम बताते हैं कि ये सब चीजें हमारे यहाँ इस्तेमाल हों और इस वजह से कम उसके अंदर जो है हमारा दुर्घटनाएं हों। मंत्रालय जो है हमारे ऊपर एक नजर रखता है कि हम जो है इस चीज को, ये टरबाइन जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके पूरा जो है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे मैन्युफैक्चरिंग की और सब के ऊपर नजर रखता है
1: जी।
2: और समय समय पर वो उसमें बदलाव भी देता रहता है ताकि एक विश्व के मानक या हमारे अपने भारतीय मानकों के हिसाब से ये चलता रहे।
1: क्या कभी लैंड एक्विजिशन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या हुई है भूमि अधिग्रहण को लेकर?
2: ये वाकई ही एक प्रश्न ऐसा है जो एक दुविधापूर्ण रहता है हर एक जो भी पवन ऊर्जा का उद्यम लगाना चाहता है। क्या होता है कि पवन ऊर्जा की या पवन चक्कियां जो है इकट्ठी साथ साथ, जैसे आप सौर ऊर्जा को देखते हैं लगातार लगे हुए हैं
1: जी,
2: ये लगातार नहीं होते, इनके बीच में कुछ दूरी रखी जाती है ताकि एक का ब्लेड चलने से और दूसरे के चलने से उन दोनों के हवा का टकराव ना हो, और उन दोनों के टकराव को रोकने के लिए उसके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है। इसके भी मानक बने हुए हैं
1: जी,
2: और जो मानक हमारे सिस्टम से या बहुत प्रयोग करके या बहुत उसके ऊपर जो है स्टडी करके बनाए गए हैं, तो उसमें जितना हमारा ब्लेड का डायामीटर या उसका व्यास रहता है उसके 3 गुना या 5 गुना दूरी उससे रखनी पड़ती है ताकि दोनों ही टरबाइंस का आगे पीछे सामने साइड में कहीं पर भी हमारा इसका आपस में हवा का टकराव ना हो और उसकी वजह से एक बवंडर ना पैदा हो
1: जी।
2: क्योंकि बवंडर पैदा होने से हमारी मशीन जो एक लिमिट तक जो घूम सकती है वो थोड़ी सी हो जाती है और हमें वो मशीन को रोकना पड़ता
1: जी। तो इसके लिए फिर जमीन भी काफी ज्यादा चाहिए होती है?
2: हाँ, देखिए हर टरबाइन जो है लगभग 2-2.5 हेक्टेयर के बीच में एक लगता है, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ दी जाती है जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगला भी उसी तरह से, पर ये 2-2.5 हेक्टेयर जो जगह है ये ऐसे नहीं, इसके ये किस साइज की या कितनी बड़ी हम टरबाइन लगा रहे हैं उनके ऊपर, और आजकल जो है इसके बीच के दूरी के ऊपर कई लोगों ने सौर ऊर्जा भी लगानी शुरू कर दी है ताकि उसको विंड सोलर हाइब्रिड का कार्य किया जा सके,
1: यानी दिन में सौर ऊर्जा मिलती रहे और पवन चक्कियां जो है रात भर काम करती रहे।
2: यही नहीं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक संसाधन हमें बनाने पड़ते हैं विंड मिल के लिए उनका भी उचित इस्तेमाल हो जाता है
1: जी।
2: कि जिस समय जैसे सुबह 8-7 बजे से 4 बजे तक हमें सौर ऊर्जा मिलती है, उसके बाद हमारी पवन ऊर्जा का उत्थान होता है, तो वो जो ग्रिड लगी है, जो हमारी तारे हैं, जो हमारे सबस्टेशन लगे हैं, उनमें वो उस बिजली को पहुंचाने में इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
2: ताकि जो खाली समय रह जाता है हमारे पवन जिस समय अच्छी नहीं मिलती उस समय सूरज मिल जाता
1: है। जी आपसे जानना चाहूंगी प्रबीर जी, हम अक्सर युवा जो हैं आजकल वो घूमना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे में जब हम नई जगह पर जाते हैं उस जगह की हिस्ट्री भी जानते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां भी समझते हैं और वहां जो हाईलाइट्स हैं उनको देखना चाहते हैं, तो जहां पवन चक्कियां होती हैं वो पूरा क्षेत्र अगर हम बात करें तो पर्यटन को ध्यान में रखते हुए क्या उस क्षेत्र में भी कुछ योगदान कर सकता है और क्या ये पूरा एरिया सेफ होता है अगर हम पवन चक्कियों को नजदीक से देखना चाहें तो?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे कि तनुजा जी ने भी बताया कि ये जो पवन प्रोजेक्ट्स है ये ज्यादातर रिमोट प्लेस पे ही होते हैं और शहर से थोड़ा दूर भी होते हैं
1: जी।
0: किसी भी पवन चक्की के प्रोजेक्ट के कारण वहाँ पे अच्छे रास्ते बन जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, लोगों की इनकम थोड़ा सा बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो जाहिर सी बात है कि फिर वो पर्यटन में भी योगदान करता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा होगा, होटल्स रहने के लिए भी अच्छी मिलेगी
1: जी,
0: तो पर्यटन पे भी वहाँ पे सहायता होता है। अगर आप देखने भी जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सेफ होते हैं ये, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा पूरा हम जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हम बनाते हैं
1: जी।
0: हमारा अपना ही BIS स्टैंडर्ड है और हमारा मंत्रालय का एक मैकेनिज्म है जिसको हम RLMM बोलते हैं, अभी हमने उसका नाम परिवर्तन करके ALMM कर दिया है
1: जी,
0: दैट इज अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, व्हिच मींस कि जो प्रत्येक मैन्युफैक्चरर जितने भी मॉडल बनाते हैं हर मॉडल की जो क्वालिटी है उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना पड़ता है जिसके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंस मंत्रालय खुद रखता है
1: जी।
0: फिर वो लिस्ट बनती है तो सिर्फ वो लिस्ट में आने के बाद ही वो इंडिया में लग सकते हैं, तो जितने भी टर्बाइन लगे हुए हैं
1: जी
0: वो निश्चित रूप से वो क्वालिटी को कम्प्लाई करते हैं
1: जी,
0: तो ये बिल्कुल ही सेफ होते हैं। हाउएवर ये बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं
1: जी,
0: जैसे कि मैंने बताया कि जो सेफ्टी होता है उसको कभी जीरो नहीं किया जा सकता, उसको हम कम करते हैं
1: जी,
0: तो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे जाके हमेशा खेलना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर पवन चक्की लगा है तो वे बिल्कुल सेफ है, इनफैक्ट जैसे इन्होंने बताया कि एक पवन चक्की से दूसरे पवन चक्की के बीच में जगह खाली होता
1: जी।
0: है तो वहाँ पे इनफैक्ट कृषि भी होती है, सोलर का पैनल भी लगाया जा सकता है या उस जमीन का दूसरा उपयोग भी करा जा सकता है
1: जी।
0: इनफैक्ट सोलर और विंड में ये भी एक पार्थक्य है कि वहाँ पे उनको कंटिन्यूअस लैंड चाहिए और सारे के सारे लैंड में सोलर मॉड्यूल लग जाता है, बट पवन चक्की के लिए हम उसको फुटप्रिंट एरिया बोलते हैं जहाँ पे वो पवन चक्की खड़ा है और उसके चारों तरफ थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता है कि कभी मेंटेनेंस के लिए क्रेन का मूवमेंट हो, बाकी जो जमीन है वो दूसरे उपयोग में आ सकते हैं और वहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। कंटिन्यूअस रहना बिल्कुल अलाउड नहीं है क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री का गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि 500 मीटर तक का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत साउंड भी आता है तो वो साउंड के कारण हमारा आज का गाइडलाइन है कि 500 मीटर तक का कोई ड्वेलिंग क्लस्टर नहीं होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई अगर गांव है, गांव बसा हुआ है तो वहाँ से फिर वो 500 मीटर दूर ही रखेंगे उसको
1: जी। लेकिन ऐसे घूमने के लिए जा सकते हैं समझने के लिए या रिसर्चर्स हैं
0: और वो सड़क से आई थिंक उसका जो हाइट होती है टिप हाइट तक आप मान के चलिए
1: जी,
0: उतना दूर में कोई सड़क नहीं रहता, मतलब जो कॉमन लोगों का यातायात का सड़क होता है वहां से वो उतना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस ताकि अगर कभी किसी कारणवश वो गिर गया तो वहां पे जाते हुए लोगों को वो ना लगे
1: जी। और वैसे भी बहुत ऊंची होती है तो दूर से भी दिखाई देती है
0: बिल्कुल, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी है, इट इज नॉट ओनली मैकेनिकल हजार्ड, वो गिरेगा भी नहीं तो क्योंकि वो बिजली पैदा करते हैं और बिजली संरचना का एक हिस्सा है
1: जी,
0: तो वहां पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी रहता है
1: जी।
0: तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पे लोग जाए उसको छुएं,
1: एक निश्चित दूरी से देखा जा सकता है जी। यहाँ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो टर्बाइन्स है इनकी कितनी लाइफ होती है और जब वो पुरानी हो जाती है तब उनका क्या किया जाता है?
0: तो जो टर्बाइन्स है उनका लाइफ निश्चित रूप से 25 साल होते हैं, बट उनकी हम बोलते हैं जब डिजाइन लाइफ, जब उनका सर्टिफिकेट लेते हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से
1: जी।
0: कुछ पुराने टर्बाइन है जिसमें वो 20 साल भी था, बट आजकल के जितने टर्बाइन है वो 25 साल के लिए बनते हैं और इनफैक्ट लोग अभी सोच रहे हैं कि इसको 30 साल या 35 साल किया जाए, क्योंकि जितना टर्बाइन का लाइफ ज्यादा होगा तो उसमें हमें जो पर यूनिट बिजली पैदा करने की जो कॉस्ट लगता है वो कम होगा तो हमें और सस्ते में बिजली मिलेगी
1: जी।
0: तो कोशिश यही रहता है इंजीनियर्स का, साइंटिस्ट का, कि इसका लाइफ को आगे बढ़ाया जाए। और आपको जान के खुशी होगी कि जो पवन चक्कियां होती हैं इसमें जो भी मटेरियल लगती है जिस पदार्थ से बनते हैं उसका 85% मेटल्स होते हैं
1: जी।
0: तो जो मेटल्स होते हैं हम सबको पता है कि वो रिसाइकल हो जाते हैं और इसका कॉस्ट इनफैक्ट हमें कभी भी स्क्रैप जो है, चाहे वो आप कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, यू नेम ए मेटल, स्टील ले लो, उसका कॉस्ट हमेशा बढ़ता ही है तो स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ेगा आगे जाके और उसको हम 100% रिसाइकलिंग करा सकते हैं। बाकी जो 10-15% रह जाता है वो होता है वो जो ब्लेड, जो पंखा के बारे में बात किया, वो पंखा नॉर्मली हमारा ग्लास फाइबर रिइंफोर्स रेजिन्स है उसमें, तो वही है जो रिसाइकल नहीं हो सकते हैं। बट एंड ऑफ लाइफ के बाद उसका भी बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या उसको डिस्पोज करने का तरीका भी है। उसको हम जला सकते हैं, वो उसका जो आस बनता है वो सीमेंट इंडस्ट्री में जा सकता है, या तो उसको जो वो बहुत बड़े होते हैं उसको काट के, इनफैक्ट आप जो शेडिंग होती है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, बस स्टैंड हो साइकिल स्टैंड हो, इनफैक्ट यूरोप में

0: सारे जगह पर आप देखेंगे वो सब जो सिटिंग प्लेसेस है इट इज यूज लाइक ए शेड। और अभी बहुत ही नए चीज है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी एक ऐसा रेजिन लोग अभी डेवलप कर चुके हैं जहाँ पे जो ग्लास फाइबर से या कार्बन फाइबर से वो ब्लेड बना है 25 साल बाद हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं। जिस रेजिन से वो बनता है
1: जी।
0: कुछ और केमिकल प्रोसेस करके वो 100% वो भी रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: तो पवन एक ऐसा अक्षय ऊर्जा बनने जा रहा है जहाँ पे 100% चीज एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से रिसाइकल हो जाएगा
1: जी।
0: और आपको एक और जानकारी देता हूँ कि जितने अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी है, चाहे सोलर हो, बायोमास हो, हाइड्रो हो, पवन हो, इनफैक्ट पवन शक्ति एक ऐसा शक्ति है जहाँ पे हम उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट
1: जी।
0: लाइक एक यूनिट बिजली पैदा करने में आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्यात किया है। लाइक जो मैंने बता रहा हूँ स्टील लगा है, कुछ लगा है, तो ये सबको बनाते हुए आपको कुछ एनर्जी खर्चा करना पड़ा होगा,
1: बिल्कुल,
0: तो उसे कुछ ना कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने वायुमंडल में छोड़ा है। तो सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट
1: पवन ऊर्जा का,
0: पवन ऊर्जा का होता
1: जी।
0: है, तो पर्यावरण के लिए ये सबसे फ्रेंडली है
1: जी। यानी बहुत ही साधारण शब्दों में समझें तो एक यूनिट बिजली बनाने के लिए अन्य माध्यमों से हम जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पर्यावरण में, पवन ऊर्जा में वो सबसे कम है। और एक लाभ ये भी है कि जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी टर्बाइन्स है, वो रिसाइकल हो जाती है और जो भी हम उन्हें डिस्पोज ऑफ करते हैं वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्यावरण के हित में भी है और हमारे हित में भी है जी। तो चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगी ओम जी, जो आपका संघ है, आपने बताया कि कई तरह की समस्या आती हैं और उसका हम समाधान निकालते हैं और मंत्रालय से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और मंत्रालय के अपनी गाइडलाइंस है जिनको आप सब लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है अगर वो जुड़ना चाहें तो क्या उन्हें दूसरे बिजनेस जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़ना पड़ेगा या वो अपने आप भी अप्रोच कर सकते हैं? जैसा आपने कलाकारों का बताया कि वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या उसका तरीका है, वो कहाँ अप्रोच करें, क्या कोई वेबसाइट है इसकी, कोई लिंक है?
2: देखिए आज के दिन क्योंकि ज्यादातर पवन ऊर्जा जो लग रहे हैं
1: जी
2: वो बिल्डिंग पे लग रहे हैं, पर इसके साथ साथ एक जो छोटे उद्योग में इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये संभव है कि वो एक मशीन, दो मशीन, चार मशीन लेके लगा दें। अभी क्योंकि उनको डिस्काउंट्स में जो है थोड़ा सा उनके लिए डिस्कॉम अपने सुविधा अनुसार उसके अंदर नहीं जुड़ते हैं, तो एक किस्म के स्वयं इस्तेमाल के लिए जिसे हम कहते हैं कैप्टिव पावर कंजम्पशन, के एक उद्योग में अगर मान लो 10 मेगावाट का या 5 मेगावाट का कुछ उनका इस्तेमाल हो रहा है तो अपनी पवन चक्कियां लगाकर और किसी मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर एक पवन चक्की लगाकर उसको अपने ही क्षेत्र में अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा बहुत हो रहा है जिसमें कैप्टिव पावर जो है एक किस्म से अपनी पावर बना के अपने आप ही इस्तेमाल करते हैं इसको, ऐसा संभव है और हुआ भी है। और इस पावर को कई बार ये मॉल्स वगैरह वाले ये सब भी अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जितने मॉल्स हैं उनको पावर जो है डिस्कॉम की पावर महंगी मिलती है और अपनी पावर उससे कुछ बचत कर पाते हैं, इसलिए इस कैप्टिव पावर का एक उपयोग जो है वो कर सकते
1: जी। तो एक तरह से ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त अगर हम चाहें तो पवन ऊर्जा क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं और उससे भी कमाई हो सकती है जी। हमने बचपन में ये कविता पढ़ी है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, लेकिन इस हवा का जादू जो है वो आज हमें समझ में आया कि पवन ऊर्जा जो है वो किस तरह से कारगर है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका योगदान है, पर्यावरण में भी इसका योगदान है और जो आम जन है उनके जीवन को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान है। इसके लिए मंत्रालय है जो नीतियां बनाता है और सहायता करता है और इसके लिए इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं वो संघ भी हैं जो कि जागरूक कर सकते हैं, जिनसे मदद ली जा सकती है। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज कार्यक्रम में हमने बात की पवन ऊर्जा के बारे में और कार्यक्रम में हमारे साथ थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पवन ऊर्जा विभाग के निदेशक डॉक्टर प्रबीर कुमार दास। आप वैज्ञानिक हैं लेकिन बहुत सरल भाषा में आज आपने हमें पवन ऊर्जा जो है उसकी पूरी कार्यप्रणाली वो समझाई। हमारे साथ कार्यक्रम में रहे उद्यमी ओम तनेजा जी जो कि भारतीय पवन टरबाइन निर्माता संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी अपना समय हमें देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। प्रबीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार
1: जी। ओम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अति धन्यवाद, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हम इस कार्यक्रम में भाग ले सके।

0: करके हमारे लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। धन्यवाद।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि अब जब आप बच्चों को हाथ में एक खिलौना लेते हुए खेलते देखेंगे जो हवा से घूम रहा है, और बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखेंगे, उनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको समझ में आएगा और पर्यावरण से आप थोड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स और दिलीप झा। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने पांच राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की यात्रा पर दहेज पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है।

लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, लोग देखेंगे तो अफसाना बना डालेंगे, यूं मेरे दिल में चले आओ कि आहट भी ना हो। एक मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 12:12 और 10 सेकेंड। ऋषिगंधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ के साथ।

मोहब्बत इंसान को शायर बना ही देती है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये गाने लिखे ही उन लोगों के लिए जाते हैं जिन्होंने पहली बार किसी को देखकर दिल संभालना सीखा हो। पहले सब कुछ नॉर्मल लगता है, दिन रात मौसम बातें, और फिर अचानक कोई जिंदगी में आता है और वही पुरानी दुनिया थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। अगला गीत लता जी की आवाज़ में आप ही के लिए।

कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर आता है जिसकी वजह से हम खुद को भी अलग अलग तरह से देखने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। और यही जो बदलाव है वही हमें और करीब ले आता है उस इंसान के, या शायद खुद के भी। अगला गीत रवि साहब की आवाज़ में।

वैसे इश्क में ऐसा ही होता है, जब दिल के कोई बहुत करीब होता है तो फिर हर खूबसूरत चीज में वही नजर आता है। बहार उस जैसी लगती है, घटा उस जैसी लगती है, और हर पल हर लम्हा उसके होने का एहसास कराता है, जैसे वो हर जगह मौजूद हो। अगला गीत फिर से रफी साहब की आवाज़ में।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: جو شخص تیرے تصور سے مہک جائے, جو شخص تیرے تصور سے مہک جائے, سوچ تیرے دیدار سے اس کا کیا ہوگا. आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपके रात की हमसफर मंजू. वक्त हुआ है 12:41 और 41 सेकेंड. गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप.
1: See, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babacity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट।

0: चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: 70s और 80s के दौर के हीरो का भी अंदाज अलग होता था, है ना। दिल टूटने की बात भी ऐसे करते थे कि आदमी उदास कम और एंटरटेन ज्यादा हो जाता था। इसी एंटरटेनमेंट को और बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ।

प्यार में रंग वंग कहाँ देखा जाता है, बस दिल साफ होना चाहिए। और वैसे भी मोहब्बत में लोग चेहरा नहीं स्वभाव याद रखते हैं। अगला गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6 स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
1: Sweden-India technology and AI corridor ko majboot karne ke liye thos initiatives par kaam karenge. Dono deshon ke startups aur research ecosystems ke beech sampark badhane ke liye हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
2: ही वेलकम्ड द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीडिश कंपनीज टू इंडियाज ग्रोथ एंड एनकरेज्ड डीपर कोलैबोरेशन इन रिसर्च इनोवेशन ग्रीन ट्रांजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। PM highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Pralhad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with the private English News Daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi tonight. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Rajasthan Royals, Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम गीत सुहाने। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ के साथ।

फिल्म हरियाली और रास्ता से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना आपने ये सदाबहार गीत। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1962 में और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था विजय भट्ट ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मनोज कुमार और माला सिन्हा ने। ग्रामीण परिवेश और प्रेम को लेकर लिखी हुई प्रदर्शित ये फिल्म दर्शकों के दिलों में खास जगह इस फिल्म ने बनाई थी। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था और इसके गीत आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। ये फिल्म मनोज कुमार के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक मानी जाती है। और अब सुनते हैं हम अगला गीत आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था फागुन, संगीत ओपी नैयर का और गीतकार थे कमर जलाल आबादी। 1958 में आई ये फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया था विभूति मित्रा ने और इस फिल्म की पटकथा लिखी थी प्रणब रॉय ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला और भरत भूषण ने। फागुन फिल्म की कहानी बीजन के इर्द गिर्द घूमती है और जो एक जमींदार का बेटा है अपनी रिलीज पर फागुन 1958 की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिट फिल्मों में से एक गिनी जाती है और अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

101 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफ़र मंजू। वक्त हुआ है 1:34:34, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत फिल्म बरसात की रात से।

आशा जी, सुधा मल्होत्रा शंकर शंभू की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म बरसात की रात से। संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1960 में और ये एक रोमांटिक संगीतमय फिल्म थी जिसका निर्देशन पीएल संतोषी ने किया था और निर्माण किया था आर चंद्र ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने। बरसात की रात फिल्म दो प्रेमियों शबनम और अमान के इर्द गिर्द घूमती है जो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। 1960 में आई ये फिल्म 1960 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। और अब अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मधुमती से।

वक्त हुआ है 1:53 और 24 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य

0: कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with

तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपके रात के हम सफर बंजू। वक्त हुआ है 2:11, आगाज हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई का। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की किशोर कुमार की आवाज के साथ।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है,

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो यकीनन इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। वाकई इन पुराने गानों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि ये दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, दिलों को नज़दीक लाने का काम करते हैं, और इस नज़दीकी को हम और बढ़ाते हैं अगले गीत के साथ। अगला गीत लता जी की आवाज़ में।

वाकई कुछ लोगों की मौजूदगी हमारे जीवन में मोती की तरह होती है, जिसके साथ रहते हुए हमें सुकून मिलता है। कुछ रिश्ते हमें ज़िंदगी में किस्मत से मिलते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें गानों में, बातों में या फिर यादों में संभाल के रखना चाहिए। अगला गीत आशा जी की आवाज़ में।

मेरी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, मेरी पसंदीदा सफ़ेद शर्ट पहनकर आओ तुम मुलाकात पर, तुम्हारी पसंदीदा सिल्क साड़ी में मैं आऊं। पास में ही कहीं गुलजार की लिखी गज़ल जगजीत सिंह की आवाज़ में बजती रहे, हम दोनों अपनी पसंदीदा कॉफ़ी साथ में पीकर घंटों तक एक दूसरे को देखते रहें। उफ, मेरे ख्वाब भी कितने अमीर हैं, पर मेरी तमन्ना है कि मेरा ये ख्वाब पूरा हो एक रोज़।

मेगा हट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:39:17 और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई।

मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। मैं कहता रहा, वो सुनता रहा खामोश। कभी कभी इस तरह भी हार हुई है मेरी।

आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, आज दिन भर ना याद किया तुम्हें, यही एक बात दिन भर याद रही।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी आज ही के दिन। अब से थोड़ी देर में यानी 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी नीता अग्रवाल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफ़र मंजू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए

0: आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। PM Modi, along with Her Royal Highness, Crown Princess Victoria of Sweden and the PM of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation. He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted

हुआ है रात्रि के 3:11 और 3 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। ये रात का सफर पूरे 24 घंटों के सफर में सबसे अलग एक महत्वपूर्ण काल, क्योंकि ये समय जो सिर्फ अपना है, सुखकर है, जिसमें जागती आंखों संग नींद में भी सपनों को आने की अनुमति है, और सपनों की बातें कुछ यूं भी हुआ करती हैं।

महेंद्र कपूर लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत गीत फिल्म से अभी आपने सुना। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों, रात का सफर रोज बरोज होता है, लेकिन हर रात फिर भी रोज अलग अलग रूपों में हमें नजर आती है। कभी आसमान में चांद पूरा, कभी आधा, कभी चांद है ही नहीं, कभी घटता या कभी बढ़ता चांद। न सिर्फ इतना बल्कि हमारे ख्यालों और एहसासों की दृष्टि से भी हर रात अलग अलग होती है।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ था। बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम एन इवनिंग इन पेरिस जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब हमराही के प्यारे वादे से सजा ये गीत।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया था। गुलशन बाबरा की लिखी रचना थी। 1974 रिलीज इस फिल्म का नाम हाथ की सफाई।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम में मेरे साथ हैं आप यानी अपनी मित्र नीता अग्रवाल के साथ। कार्यक्रम में बढ़ती है आगे। साथियों, जीवन की राहें और कई बार दो राहें भी होता भी है ऐसा कभी कभी, राहें दो राहें या स्थान विशेष छोड़ जाने की मजबूरी, लेकिन मन की राह एक ही रहती है। कैसे, आइए जानते हैं इस गीत में।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत था साथियों राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। फिल्म का नाम वो कौन थी जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें थी। और अब हमराही बनकर आ गए हैं एक मतवाली आंखों वाले। क्या कहा जा रहा है इन्हें, सुनते हैं।

0: आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। शैलेंद्र की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम छोटे नवाब, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। गायक कलाकार थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर।
1: नब्बे वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
2: सुनिए एफएम गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
2: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1 पर।

साथियों, रात का समय कई बार नींद न आने का समय भी बन जाता है। अब नींद न आने के कारण तो भाई कई हो सकते हैं, उन्हीं में से एक कारण ये भी।

शमशाद बेगम और किशोर कुमार की स्वरों से सजा ये गीत था नया अंदाज फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। ओपी नैयर का संगीत था, चानीसार अख्तर की लिखी रचना थी। और अब साथियों एक खूबसूरत अदा लीजिएगी जिसमें एक मीठी प्यार भरी शिकायत का खूबसूरत अंदाज शुमार है।

बॉबी लहरी के संगीत से सजा ये गीत लिखा था रमेश पंत ने। मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम वारदात, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1981 में। रात के खामोश सफर में चांद का साथ रहना और उस पर भीगी रात का चांद और भी सुंदर हो उठता है। काली घटा सी आंख मिचौनी से खेलता ये चांद हम सभी को भाता है।

लता मंगेशकर्मा नाटे के स्वरों से सजा ये गीत सुहागन फिल्म से अभी आपने सुना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मदन मोहन का संगीत था हसरत जयपुरी की लिखी रचना। और अब हम राही कार्यक्रम के अंतिम गीत पर, आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति पर बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीत, एक और गीत आ रहा है परिवार फिल्म से।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, गुलशन बाबरा की लिखी रचना, फिल्म का नाम परिवार जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा

0: भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरों के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें 4 दिनों का अंतर हो सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। PM Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the PM of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation. He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent, and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly, which is being held from 18th to 23rd May 2026. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. He said the assembly will bring together health ministers, dignitaries and public health experts from more than 165 countries, reaffirming the shared global commitment towards building stronger, more inclusive and resilient healthcare systems. India has expressed deep concern at the attack targeting the Barakah nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs for Rajasthan Royals. Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. Put to bat, Rajasthan Royals scored 193 for 8 in stipulated 20 overs. Dhruv Jurel was the highest scorer with 53 runs. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 4:11 और 7 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। सूर्य की सुंदर दर्शनीय आभा ने अपने आने की दस्तक दे दी है। सूर्य पर सूर्य की लालिमा, धरती पर सुंदर लालिमा का प्रकाश बिखेरे। सूर्य की सुंदरता, अंधियारे के बाद उजाले का सफर, जीवन को संदेश देती इसकी हर किरण।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सचा ये गीत अभी आपने सुना जानवर फिल्म से। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम डॉक्टर विद्या, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1962 में। मित्रों, जैसे जैसे वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये दुनिया, देश और हम भी उस परिवर्तन के दौर में बहते चले जाते हैं। जैसे कि विशेषकर बरसात के दिनों में झूलों का लगना, वो भी अम्बुवा की डारी पे। गीत भी है एक ऐसा एक, अब झूलों का दौर जरा कम ही नजर आता है। झूला झूलते समय जो हवा लगती थी उसका एहसास और झूले का आनंद इस गीत के साथ।

0: मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, नौशाद का संगीत था, शकील बदायूं की लिखी रचना थी।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति जीवन में आता है, चला भी जाता है, लेकिन अपने होने का एहसास जीवन भर के लिए दे जाता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी बातें, यादपन बार बार उभरती हैं हमारे मन मस्तिष्क में।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत छोटी सी बात फिल्म से अभी आपने सुना। 1976 रिलीज ये फिल्म थी मित्रों। सलील चौधरी का संगीत था, योगेश की लिखी रचना। मित्रों गीत संगीत की तासीर ही कुछ ऐसी होती है कि जब हम इनका श्रवण करते हैं तो इनकी

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वरों से सजा यह गीत गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म से था, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। मदन मोहन का संगीत था राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना।

मित्रों, अरुणिमा की आभा जब सजती है, अरुणिमा की आभा जब सजती है तो सबसे बेहतरीन मौसम होता है। प्रदूषण बहुत कम या नहीं भी होता, शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण, कोई व्यवधान नहीं। और ऐसे में कोई बजा रहा सुरीली धुन, छेड़ रहा ये गीत।

भूपेन हजारिका के संगीत निर्देशन से सजा ये गीत माया गोविंद ने लिखा था। लक्ष्मी शंकर की आवाज थी। फिल्म का नाम आरोप, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब दिल में सजी आस का एक रूप ये भी।

सुबीर सेठ की आवाज से सजा ये गीत आस का पंछी फिल्म से लिया था। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। ये रिश्ते बनने का कारण चाहे कुछ भी हो, इन्हें भली प्रकार से निभाने के लिए जतन करने होते हैं। कभी कोई माफी मांग ले, कहीं कोई और हाँ माफी ली गई बात को दोहराए बिना ये ख्याल रखा जाए, नहीं तो माफी की भी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ ले ले
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चलने तक होगी समझे
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।
1: अच्छा जी मैं हरी चलूंगा जाओ ना
0: देखी सबकी यारी मेरा दिल जला।
2: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज उसी सजा ये गीत काला पानी फिल्म से अभी आपने सुना। 1958 रिलीज ये फिल्म बजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था और सचिन देव बर्मन का संगीत था। साथियों सुबह होने वाले कार्यों में जब ऐसा कार्य जुड़ जाता है जो हम बहुत समय से सोच रहे हैं और वो हो भी जाता है या होने ही वाला है तो इस तरह की खुशी तो व्याप्त होना स्वाभाविक ही है।

आशा भोसले की आवाज से सजा ये गीत सपन जगमोहन का संगीत नक्श लायलपुरी की लिखी रचना 1966 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जिम्बो फाइंड्स अ सन।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत क्रांति फिल्म से अभी आपने सुना। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। संतोष आनंद ने गीत लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। रूस में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ओरफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Mr. Modi arrived in Gothenburg yesterday on a two-day visit to Sweden. PM Modi was awarded the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander, Grand Crosses in recognition of his exceptional contribution to the India-Sweden relationship and his visionary leadership. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. They discussed ways to deepen cooperation in trade and investment, technology and innovation, green transition, space, emerging technologies, defense and security, SMEs, research and people-to-people ties. The two leaders agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of their people. The leaders also exchanged perspectives on regional and global issues. PM Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. In the fourth leg of his visit, the PM will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 5:11 और 26 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, महात्मा गांधी जी का कथन है, केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दूसरों पर छिड़कें तो उसकी कुछ बूंदें अवश्य ही आप पर भी पड़ती हैं। मित्रों, इस कथन को यदि हम अपने जीवन में ढाल लें तो हमें खुशी मिलेगी ही। खुशी को बांटे हुए लम्हे दूसरों के जीवन को भी महकाएंगे, जिनसे प्रेम और प्रसन्नता दोनों

0: हेमंत कुमार की आवाज से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से अभी आपने सुना। 1955 रिलीज फिल्म सरदार मलिक का संगीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी। साथियों, जब हम आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में, जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण हो जाती है, तो किसान के साथ साथ धरती भी उस खुशी को महसूस करती है। इसी तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने, उसे साफ रखने के वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके जरूर खुशी का अनुभव करेंगे।
1: धरती

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत नौशाद का संगीत बद्ध किया। जानिसार अख्तर की लिखी रचना, फिल्म का नाम आईना जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। मित्रों, सुबह का सफर दिल में भी आशाओं की लालिमा लिए होता है, कई सपने कई अरमान कई चाहते।